0: कुछ गई है तत् सब को निवे आपको पर को निवे न कोय तर्त राजु तो लिए निवे सो गौरा होय अपराधी दुना निवे जो हंता मेरे गाहे शेष निवाये क्या थिए जारी देख सुदे जाहे महला पहला
1: पढ़ पुस्तक संध्या वादन सिलपूज सिबदल समादन मुख झूठ रूप संसारन त्रिपाल ते हाल विचार गनमाला तिलक लाटन दोती वस्त्र कपाटन जान सुब मंदन

हरिया सब कोय, सुत क्यों कर खिये सुत को बिर सोए, नानक सुत के एव न उतरे, ज्ञान उतारे तोय महला पहला।

इस मन को होर संजम को नाही, वेण सतगुर की शरणाए। सतगुर मिले उल्टी पई, कहना किशु न जाए।

0: भणत नानक सतगुर को मिलदो मरे, गुर के शब्द फिर जीवे कोई। ममता की मल उतरे ए मन हछा होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: एक ओंकार सतनाम। करता पुरख निरभउ निरवैर, अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। बीसुमार अथा अगणत अतोलै, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बुलै। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बुलै। जुग जुग अटल दीन अर दुनी दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी, तिना दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पावन स्थाना उपर जड़ मिल बैठे गुरु प्यारियो, सतगुरु जी ने अपार बख्शिश वरताई है। अपने पावन चरण कमलों पास जुड़ के बैठन का सुभाग बख्शिया है। आओ गुरु प्यारियो, जो धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी दियाँ लड़ीवार विचारां रोज़ाना आप संगतां इन्हां पावन अस्थानां तों श्रवण कर दियाँ हो, उन्हां चल रही लड़ीवार गुरबाणी विचारां नाल सांझ पाईए। विचारां आरंभण तों पहलां मन बिरतियां दी एकाग्रता वास्ते सरबत संगत मिलके उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। एक बार फिर करो रसनावां पवित्र और मिलके आखो जी। सतनाम श्री

सनक सनंद महेश समना शेख नाग तेरो मर्म न जाना सनक सनंद महेश समना शेख नाग तेरो मर्म न जाना।

सुरपत नरपत नहीं गुण जाना, चार वेद अर सिमरित प्राणा, कमला पत कवला नहीं जाना, कह कबीर सो पर मैं नहीं, पग लग राम रह शरणाई, कह कबीर सो पर मैं नहीं, पग लग राम रह शरणाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभउ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सहभंगुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभउ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सहभंगुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभउ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सहभंगुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभउ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सहभंगुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभउ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सहभंगुर प्रसाद।

चित आवन का सदका सर्व सुख होए, जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तां तां रछिया रियायत, देग तेग फतेह बिरद की बैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले, बोलो जी वाहिगुरु, बोलो जी।

ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਹੇ ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਜਗਦਗੁਰੂ। ਹੇ ਸੰਸਾਰ ਤਾਪ ਹਰਣ ਹੈ ਕਰੁਣਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੁੱਖ ਹਰੋ। हे शरण जोग दयाल है दीना नाथ, मया करो। शरीर स्वस्थ खीण समय, सिमरंत नानक राम दमोदर माधव है। जब लो नहीं पाग लार उदय, तब लो भ्रम ते फिर ते बहुतायो। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हो मिट है नहीं रे पछतायो। तत विचार यह मथुरा जग तारन को, अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह दे शाह हो।

प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद वाहे गुरु।

अनंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खटकर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावें मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुझ जे बड़वर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुदे आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहि सो होई तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी तुदे आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सबसे का जान होई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी ते आया जिसनो कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझी माहे तुझबिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल वियोग मिल विछोड़िया संयोगी मेल जिसनों तू जान आहे सोई जन जाने हर गुण सदही आख बखाणे जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुदबिन दूजा अवर ना कोए तू कर कर वेखे जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सर्वरड़े पहिले निवासा पानी पावक तिन्हे किया पंकजो मोह पग नहीं चले हम देखा तहें डूबी अले मान एक न चेतस मूड मना हर विसर तेरे गुण गलया रहाओ ना हो जति सती नहीं पड़या मूरख मुगदा जन्म पया प्रणवंत नानक तिनकी शरणा जैन तू नाही विसरया आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानख दे हुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तिर किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम संग्याम लाग पवजल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ जब तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जान्या हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो हो शर्मा जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जान्या हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रखो हो शर्मा एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सब है तुम काबहो आप हाथ दें मोहे बचाव हो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा मोर अच्छा निज कर दे।

करिए सवैरन को आज संगरिये पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ते आऊं जो बर चाहो सो तुम ते बाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन शतर हमारे मारी है आब हाथ दे मुझे उबरिये मरण काल का त्रास निवरिये हु जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करियो रक्षा राख लियो मह राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुमहो पुरी चतरदस कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जो धियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जक्षण उपजायो आदि अंत एक कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो शत्रन को पलम बद कियो कट कट के अंतर की जानद भले बुरे की पीर पछाणद चिंटी दे कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घड़ घड़ के पढ़ पढ़ की जाने जब उद करख करा कर तारा प्रजा तरत तव देहे अपारा जब आ करख कर तुह कब हूँ तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आब अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहित नर आलम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड़ उचारत भेदा जाको भेवना बावत बेदा ताको करपाहण अनुमानत महामूड़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदाशिव ड्रंकार का चीनत नह भिव आप अपनी बुध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा ना जाए पसारा किह बिद सजा प्रथम संसारा इक्कै रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कहीं पूपा अंडज जे रज सेताज कीनी उत्पज खान बहुर रच दीनी कहों फूल राजा हवै बैठा कहों सिमट भयो शंकर अकैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आदि युगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखे उबारे असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उतपाता सकल मलेच करो रणगाता जे आस्तुता शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तहवाए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को इक बार ते है ताके काल निकट नह है रक्षा हुए ताही सब कल दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल कृपा दृष्ट तन जाहे न हरेओ ताकि ताप तन कमाए हरे हो
रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट सहा शवै सके ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संवारा, काल भांसते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दरिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहो उबारी। सर्वठोर महो सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहो उबारी। सर्वठोर

सवैया पाए गहे जावते तुमरे तबते को आंख तरह नहीं आन्यों राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यों सिमरत शास्त्र वेद सभाए बहुपेद कहें हम एक ना जान्यों श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तो हे बखान्यों दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ के

0: हर सकल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वारे वही गहे की लाज आस गोविंदास तुहार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मनवजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां शब्द तां गावो हरी केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दूख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारणा सबना गल्ला समरत सुआमी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या ना ही घर तेरा घर तां तेरा सब किछ है जिस दे हैं सो पावे सदा सिवत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जैना भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जैना इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दिया एह वड़ियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागे घर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कह नानक तै सुख होआ तिते घर अनहद वाजी आनंद सुनो वडवागी हो सगल मनोरथ पूरे पर ब्रह्म प्रभु पाया उतरी सगल बसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहा भर बुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहा भर बुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृति नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावे जे को पुंचाए तिसका होए उदारो एहे वस्त जी नहीं जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले तीवा तन मन थी वे हरे आ तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मेरे तां जीवा तन मन थी वे हरे आ। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: तू ठाकुर तुम पहे अरदास जियो पिंड संग तेरी

सगल समग्री तुमरे सुत तारी तुमते हो ऐसो तुमरी गत मित तुम ही नानक दास बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै

कृष्णतया आइयन जिस डठ सब दुख जाए तेग बहादुर सुमरै कल नौ निदावेताए सब थाई होए सहाय दसवा पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीयां दे पाठ दीदार दा ध्यान तर के खालसा जी बोलो जी पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडठ कीता तेना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान तर के खालसा जी बोलो जी जिन्ना सिंघा सिंघनिया नि धर्म हेत शीश दिते बंद बंद कटाए।

सब सिखन को हुक्म है, गुरु ग्रंथ जी मान्यो, जो प्रभु को मिल बोच है, राज करेगा खालसा, खुआर हुए सब मिलेंगे, खुआर हुए सब मिलेंगे।

0: और काफी देर तक फिर उसे तरह वो टिके रहिंदे आ। संगत नूं पता होएगा ताई उठ के चली गई ना। सानू साडे कोल जिहड़ी समझण वाली बिरती है ना वह घट गई है। कई बार ना कई कोई पाठ करदा करदा किते सुरत जुड़ जाए, अखां बंद हो जाण ते देखण वाला कहिंदा इह ते घूक सुत्ता पिया, इहदा नींद आ गई है। वह फिर उहदा मजाक बनाउंदे आ, तरह तरह दीआं गल्लां होण लग जांदीआं वी देखो जी इह ते पाठ करदा करदा सौं गया। भावें अंदर बिरती सुरत जुड़ गई होवे। भाई राम कोयर जी की सुरत जुड़ी, नेत्र बंद हो गए, मुख चो बोल ना निकलिया, शरीर बिल्कुल जदों टिक गया, संगत सरोते जड़े रोज सुन आउंदे सी उन्होंने देख लिया भी हुण भाई राम कोयर जी की सुरत जुड़ी है। तो पता नहीं 2 घंटे आ, 4 घंटे आ, 6 घंटे आ। इस वास्ते सब आपो अपने अस्थाना नूं सरोते जड़े सन ओ चले जांदे हन।
1: पाचल पहर दिवस को हो तो,
0: शाम दा वक्त सी जदों ओ प्रसंग इतिहास सुना रहे सी, जिवें आपां हुण बैठे हां इतिहास सुनण लई। कहिंदे ने शाम दा ओ समां सी जदों भाई राम कोयर जी ने ये प्रसंग सुनाया सी।
1: बुढ़ा तब समाद महंजो तो,
0: बाबा बुढ़ा साहब दी अंश विचो भी ने ते बिरद शरीर है भाई राम कोयर जी दा, समाधि दे विच टिके हुए हन।
1: सर्ब जामनी तिवें बताई,
0: सारी रात बस उसे तरह जिवें चौंकड़ा ला के बैठे है ना, बस सारी रात एवें ही लंघ गई। बस सुरत जुड़ी, नेत्र बंद, मुख बंद, पहिंदे सारी रात इदां ही भाई राम कोयर जी बैठे रहे।
1: जागे जब प्रभात होया,
0: जदों अमृत वेला होया ना प्रभात वेला, उदों उन्हां दे नेत्र खुले हन।
1: उठ कर सोच समेत सनाने,
0: उठे ने उठ के फिर इशनान जिहड़ा ओह

0: पर गिने नहीं जा सकते, बेशुमार ने। इसे तरह मेरे सतगुरु जी दे गुण बेशुमार ने, जड़े बयान नहीं किते जा सकते। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब, गुणी निदाना तुमरी महिमा, वरना साकों तू ठाकुर ऊच भगवाना। भाई राम कोयर जी अगला इतिहास शुरू करन तो पहला ये विचार कर रहे हन।
1: तथा कथा गुर बरने कौन,
0: कहंदे गुरु महाराज जेड़े ने अनगिनत गुण ने, उना दे गुण कौन बयान कर सकदा है।
1: कहत सुनत सिखन सुख पौन,
0: हां जेड़ा प्यार नाल भिज के गुण गावेगा और जेड़ा प्यार विच भिज के गुण सुनेगा उनू आत्मक सुख उत्तम

0: लख की रकम कठी की है सारियां दे विच बैठ के गल करदा है।
1: आवहे शाह सैन हित जंग
0: कहिंदे आपां इह धन भेजांगे दिल्ली ओ सैना अपनी साडे कोल भेजणगे जो साडी मदद करेगी।
1: लहर गुरु को देहने गासे
0: फिर आपां गुरु महाराज नाल लड़ सकांगे उन्हां नूं आनंदपुर साहिब तो बाहर कर सकांगे।
1: तुम बैठे पिख ले हो तमाशे
0: इस वास्ते कहण लगे भी जे आपां इह धन ना भेजिया उन्हें सैना ना साडे कोल भेजी फिर इह तमाशा जिहड़ा देखण नूं मिलेगा साडी हार हो जावेगी।
1: देनो दरब सफल ही जानो
0: इह जिहड़ा तुसीं धन इकट्ठा करके मैनूं दे रहे हो इह सफल ही जानो। इन्हां दे मन च खोट है कुटल नीति इह जिहड़ी कर रहे ने कहिंदे ने

0: और जेड़ा ये कीरतपुर साहब दा पवित्र स्थान है, कीरतपुर साहब तो लंघ के जांदे हन
1: आनंदपुर होए हो नेर।
0: आनंदपुर साहब दे जेड़ा ओ जिथे हद शुरू हुंदी है ओदे नेड़े आ गए हन।
1: ओ लंघे कीरतपुरी ते दोलम बरिंद बजाए।
0: जदों ये कीरतपुर साहब तो आनंदपुर साहब नू जा रहे सी, इन्होंने अहंकार दे विच जिहड़े नगारे दी चोट हुंदी है ना, पिछों ते आ दिल्ली तो ते चोट लाउंदे ही आ रहे ने, पर जदों कीरतपुर साहब ते आनंदपुर साहब तक दा रस्ता है उत्थे इन्होंने कहिंदे दोरी चोरी जिहड़ी है ओह चोट नगारे ते लाई ताकि उहदी दूर दूर तक आवाज सुनाई देवे ते गुरु ते गुरु का खालसा जिहड़ा ओह भयभीत हो जाए वी कौण आ गया। इन्होंने कहिंदे ने दौरी चौरी जिहड़ी है चोट नगारे ते लगा के दूर दूर तक ओहदी आवाज पहुंचा।

रात्रि वेले दे दीवान सजाए गए, सजे हुए दीवाना अंदर शब्द कीर्तन, गुर इतिहासिक लड़ीवार कथा विचार, से पौड़िया आनंद साहब जी के पाठ की अरदास है जी। अखरवादा घाटा भुल चुक माफ करनी आप जिया दर ते, समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी, तिल फुल पेटा वांदर प्रवान करनिया, यात्रावां सफल करनिया, दरों करों गुर सिखी जीवन, नाम बाणी दिया दातां बख्शनिया, कलगी धर सचे पातशाह, धन धन साहिब।

सब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी माने ओ, जो प्रभु को मिल बोच है राज करेगा खालसा। खुआर हुए सा मिलेंगे, खुआर हुए सा मिलेंगे। बोले सोनिहाल वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

साहे सहन सा गुरु गोविंद सिंह ऐसा सतगुरु जे मिले तिसमें सिर सौंपिए विचों आप जाए।

रहे शरणाही वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम

सोहिले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जीअड़े संभालियन देखै गांधी वनहार, तेरे दाने कीमत न पवै तिसदा ते कवन सुमार। संवत साहा लिखिया मिल कर पाव तेल, देहो सजना सीसड़ियां जहो वे साहिब सुमेल। कर करो हो पहुंचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सुमरिया नानक से देह अवान। राग आसा महला पहला से घर से

चबरो करे सगल मन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती हो पवखंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वजंत फेरी रह। सहज तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूर्त नायक तोही। सहस पद विमल ननेक पद गंधवे न, सहस तव गंधे चलत मोही। समय ज्योत ज्योत है सोए तिस्ते चानन, समय चानन होए।

चौथा काम क्रोधन करवा परिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखित लिखे गुर पाया मनहर लिम मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वटा हे कर डंडा तो पुन वडा हे रहा साक पहल साधन जाने अंतन तो हम मैं कंडा हे जो जो चल है चुभे दुख पावे जम काल सह सृजंडा हे हरजन हर नाम समानी दुख जन मरण पव खंडा हे अविनाशी फरक पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम उधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे राग गोड़ी पूर्वी महला पंजवा करो।

सोहेला अहो दो कटे दिन सरे नारी मन गुरमिल काज सवारी रहा यह संसार विकार संसे मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिस जगाए पिया बेहु रस कथ कथा तिन जानी जाको आई सोई विहा जियो हर गुर ते मन है बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे बहुर न हो गो फेरा अंतर जामी।

ठकुर हरदास तने गुर राम दास सर अपार परे अनपो अनुमान अकल लिव लागी पारस पेटिया सहज करे अनपो अनुमान अकल लिव लागी पारस पेटिया सहज करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया चित लागा संतोख सरे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पा

0: कब काल ठकुर हरदास तने गुरु राम दास सर अपर परे।
1: अपर परे पायो अपार रिद अंतर तारेओ दुख पंजन आत्म परबोध मन तत बिचारेओ सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै परसाद सहज सेती रंग माने नानक परसाद अंगद सुमत गुर अमर अमर वरताए ओ गुर रामदास कल उचर तै अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसे अमै रस रसन प्रकाश मिलत शांत उपजे दुरत दूरंतर नसे सुख सागर पायो दिंत हर मग न हुटे संजम सत संतो।

प्रीत पुबली ना हुट सतगुर शब्द अथा अमै तारा रस गुट मत माता संतोख पिता सर सहज समायो आजुनी संभवे ओ जगत।

पै दृढ़ तिन जन दुख पाप को कत होवे जियो। धर्म करम पूरे सतगुरु पाईए, जाकी सेवा सिद्ध साध मुन जन सुरनर जाचे, शब्द सार एक लिव लाईए। फुन जाने को तेरा पार, निर्भो निरंकार अकथ कथनहार, तुझे बुझाई है।

हुन मन बच करम जान, अनत दूजा नामान। नाम सो अपार सार, दीनो गुर रिद धार। नाल कव पारस परस।